0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello, namaste, sasriya kaal. Kya haal chaal hai, dosto? डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है. मैं हाँ डोगरी दी थी नेहा शर्मा. मैं आज तुसें सुनानी एक डोगरी कविता. बड़ी गै अच्छी, बड़ी गै मीनिंगफुल कविता. तुस ध्यान लाइए सुनियो. धियां ते होंदियां ने पुत्तरे शा प्यारियां, कुख बिच मारने दी करो नी तैयारियां. इंदे जंदे गे होई जान घरे बिच बरानियां. धियां ते होंदियां ने मन्नता बगानियां, हसदियां ने जियां फुल्ले दियां क्यारियां. धियां ते होंदियां ने मन्नता बगानियां, भरिए डुआरियां होई जान बगानियां. गुटियां पटोले छोड़ी जान निशानियां, घर घर खेडा इंदा लगन नियारियां. दुख जरिए भी मुआ नहीं बोलदियां, भेद दिले दे कदे नहीं खोलदियां. दाऊ दिने दियां परौनियां बेचारियां, धियां ते होंदियां ने पुत्तरे शा प्यारियां.

वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं पता तुसी सारे की ये कविता बहुत अच्छी लगी है क्योंकि है बड़ी अच्छी बड़ी मीनिंगफुल है। पर इस कविता के माध्यम कला मैं स्नेहा देना चाहनी हाँ साढ़े पढ़े लिखे समाज जो अज भी कुड़िए ते मुड़े च भेद करते हैं। अज भी अगर उन्हें पता लगी आ कि ये कुड़ी होने वाली है तो मिनट नहीं लाते उसी खत्म करने च। अज भी कोई ना कोई टब्बर ऐसा है जिथे अज भी मत्थे टेके जाते हैं कि कुड़ी नहीं हो तो मुड़ा हो। अज बड़ी तरक्की भी हो गई है तो बड़े सारे परिवार एक एग्जाम्पल भी सैट करते हैं उन्हें कुड़िए के जम

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे हे दुग प्रदेश दी तीए दी, तीए ते मुड़े चोने आले भेदभाव दी। मैं आ तुंदी आरजे डोगरें दी धी नी। हाँ, मेरा ट्विटर अकाउंट है डोगरन सोल, करने तुस उत्थे मैं फॉलो करी सकते हो। ते अगर अज दी धीआं अगर झांसी दी रानियां ते ओह सती ते सवित्री दा भी किरदार हन, हर तरह दा एक मल्टी रोल प्ले कर दिया अज दीआं धीआं। ते मैं तां गई इस रेडियो दे माध्यम तुंदे सारे कोला फिर रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ कि कुड़े ते मुड़े च बिल्कुल भेदभाव बंद करिए, उन्हें बराबर दा दर्जा देइए। ते उन्हें तुस ये मेरा स्नेहा अगे भी शेयर सारे जरूर करियो। ते हुण मैं इजाजत दियो, मेरे जाने दा टाइम होई है, फिर मैं परतिए मिलगी तुंदे कन्ने एक नवी और कोई पेशकश दे कन्ने। बाय बाय।

0: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Court, Bolton, 9059519394. Stephen Furniture ki dhamake dar festival season se.
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ देके बचा लिया
2: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA, कॉल करो
2: 6475294 6548952. शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251।
3: नाले चोपड़िया नाले दो दो।
4: आहो जी मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, डाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
3: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
4: एक बार आओगे ते बार बार आओगे।
3: अनबीटेबल प्राइसेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी, 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
4: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
5: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ, ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
6: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
2: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
6: 416-717-2929
2: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ 4, ਇਟੋਬੀਕੋ।
7: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

सतगुर होए दया तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ चूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानी है, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाह खूबसूरत चढ़दी कली सवेर दे विच खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके। उम्मीद करते हैं तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला में होंगे, अज की खूबसूरत सवेर में जियान आख रहे होंगे। स्टूडियो का एक नंबर 905-673-3337 905-673-3337 से गल्लां बातां होणगियां मेरे नाल पंजाब की धरती तो हमेशा की तरह रमेश हुशियारपुर जी जुड़ चुके हैं। सो 905-673-3337 जुड़े हो पंजाबी लहरां दे नाल।

0: अंदाज एक खूबसूरत सुविधा खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्क सी है। चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक जिसे सुन रहे हो उत्थे बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज विच सारनिया दे बॉर्डर तो लेके नैगरा फॉल तक यानी कि किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज लंडन वुडस्टॉक हुंदा है ब्रैंटफोर्ड तो लैके हैमिल्टन ते नैगरा फॉल रीजन दे विच और नाल नाल सानू नॉर्थ दे विच बैरी तो मस्कोका ते तुसी ओरेंजवेल तो जो सानू टोबरमरी तक और जो विंगम तो लैके मैंटोन आइलैंड तक सानू सुन रहे हो अपने रेडियो सैट से www.am530.ca दे उत्ते जाके सानू तुसी दुनिया के किसी भी कोने च सुन सकते हो इंटरनेट की मदद के आप सब का हार्दिक स्वागत। 914 स्टूडियोज के घड़ियों के उत्ते 10 अगस्त का दिन हो चुका है। असी तुसी और CHLOAM530 डाल इस चैनल के नाल तुसी डिजिटल फ्रीकुएंसी राही जिथे जुड़ रहे हो 30 साल प्लस का समा और ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर अराउंड 14 to 15 years जो मैंने हो गए ने साल हो गए ने मैनू और मैं आप दे रूबरू हाँ। अमनदीप सिंह बैनीपाल मेरा नाँ और बहुत सारे लोग नवे जुड़ते रोज़ आप सबनों मोस्ट वैलकम। फ्रीकुएंसी दे विच असी जिथे शोज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं अलग अलग मोड और अलग अलग स्विंग्स के उपर उत्थे रेडियो वाज़ दे विच असी इनफॉर्मेशन ते नाल नाल थोड़े फाइनेंस ते तुहाडी लाइफ नाल जुड़िया कुछ गल्लां चढ़दी कला निरपौ निरवैर की जिते मैं गल कर देना वह सब लेके आने एक बार फिर तो जी आया तो चलिए फिर उस सफर के वाल ग्रे स्काइज पियर्सन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 खाली तो जिथे कुछ खबर पोटरी एयरलाइन वालों माफ़ी मंगी गई एक बच्चे का बकल कसया नहीं गया वो कारण जोड़ा फ्लाइट है BC तो ओंटेरियो के लिए वो जरा कैंसल करना पाया लोगों जहाज़ के ही रहना पाया सो दे सैड वी आर सॉरी चलो जी टाइम फिस सारा कुछ खत्म। नंबर टू के उत्ते BC विच अग लगी है पूरी स्टेट जिहड़ी है पूरी जिहड़ी ब्रिटिश कोलंबिया वह एक स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिकलेयर कर दी गई अग बहुत तेज़ है तो ये अग वड्डे शहरों वालों जा रही है तो एक व्यक्ति की मौत हजे तक सिर्फ डिकलेयर की गई है क्योंकि ऐसी अफरा तफरी चेक नहीं किया जा सकता। दूसरे पास पीयर पॉल जिहड़ा है ओपोजिशन लीडर आ वो थोड़ा जिहा बोलिया अच्छे दिन आने वाले हैं तो अच्छे दिनों के वास्ते पीयर पॉलियर जिहड़ा बोलिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने चिट्ठी लिखी है फाइनली अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के कपड़े पाड़न की बजाय पीयर पॉलियर ने जिहड़ा है पहली बार वो काम किया जो ओपोजिशन लीडर एरन ओटूल ने किया जो पिछली बार यह बैड एग आया सीगा बैड एग तुम समझ दो कि गल करदा जिन्हें पूरी दुनिया तराही मचाई हुई है तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हो सो इस तो बाद कुछ होर खबर जिन्हों के नाल थोड़े जुड़ांगे पर उस तो पहला आप जी कैसे हो 9:17 स्टूडियोज़ की घड़ियों के उत्ते हो चुके हैं तो आप जी का हाल चाल पुछना चाहता सीगा कि तुसी सानू कित्थे कित्थे सुन रहे हो इस समय शायद मैं किसी कोई काम कहना हो तो तुसी शहर कि है आप कर दें चढ़ती कला एक इंजैक्शन है जिम्मे बूस्टर नहीं लगा दें बूस्टर लगाने कि चढ़ती कला तो चढ़ती कला वाला बूस्टर अच्छा चाहिए तुम कि शहर चो मेरे दोस्त ने एक परमजीत भाजी वह कहने चैक करना लोग कि शहर सुनते हैं तो हूँ मैं उन्होंने दसना चाहता सी कि शहर लोग सुनते हैं इस समय एमरेट जी है फ्लाइट आ चुकी है जी बहुत सारे लोग उतर रहे हैं इंडिया तो बहुत आते हैं इस फ्लाइट राही पर तुसी अगर अपनी एयर टिकट बुक करवानी है ऐतकी टिकट्स महंगी होनगियाँ क्योंकि सूरी साहब ने जो BJP उन्हें एथनॉल गड्डिया चलन लाइया ने जहाज़ ना चलने शुरू हो जाए यानी कि तुसी अपने सस्ती हवाई टिकट्स अगर लेने ने तो तुसी कॉल करनी है कोमल नूं ऑल लिंक ट्रैवल तो 905-239-7711 905-239-7711 905-239-7711 कॉल करनी हैगी है तो परमजीत जी सत श्रीकाल की हाल चाल ने
1: सत श्री अकाल जी बहुत ज्यादा वधिया तुसी सुनाओ कि
0: पहला आप सारा ना हैलो हाई कर लिए
1: बिल्कुल करो
0: तो गाना सी ना हैलो हैलो करया कर कोई नवा पवाड़ा पा लेंगे
1: हां जी
0: वो तो वेस्टर्न कल्चर दी एंट्री सी साडे कल्चर दे विच सो गाने जड़े ने वो कल्चर नूं दसाउंदे हुंदे
1: ने जी बिल्कुल जी
0: तो उस समय डिस्को डिस्को हैलो हैलो दी गल्लां गुरदास मान ते कोई लोग करन लग गए सी गाना मैं सुनदा ना मैनूं हासा बड़ा आउंदा ये कोई शेरा करके सिंगर है ते ना हैलो हैलो करया कर कोई नवा पुआड़ा पा लेंगे ना डिस्को डिस्को करया कर कोई नवा

0: Medical Insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Chartered Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निजर साहब वतनों दूर तुहाडे लई पेश करनगे और हिंदुस्तान तो मनप्रीत जी खबरां भी पेश करनगे। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज 6:16 से सूरज आया 8:29 ते चले जाना। और मामा चंद सिंह दी सुन लो, मामा जी रात को आता है, मामा जी ये करता है, चंद्रमा ये करेगा। अज सवेरे 3:10 ते आया ते शाम नू 7:35 ते देख सकते हो। जे आकाश साफ होया तो सज्जे खब्बे किते ना किते मिल जाएगा। अज सारा दिन मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, चखड़ झोले, थंडरस्टॉर्म, बारिश पेगी, तापमान 29 डिग्री। कल 28 डिग्री टैंपरेचर है, मोस्टली सूरज चमकेगा। बुधवार मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 28 डिग्री, थर्सडे 27 डिग्री तापमान सूरज चमकता रहेगा, फ्राइडे 26 डिग्री सूरज चमकेगा और सैटरडे 28 डिग्री सूरज चमकता रहेगा। स्पोर्ट्स पिछलियां 3-4 जिहड़ियां गेम्स हुई ब्लू जे वालियां, यह आपकी सीरीज जितते रहे। रात भी हार गए लेकिन 3 गेमां चो 2 गेमां जित चुके ने। उधर मेपल लीफ आ उन्हां दा स्केड्यूल जारी हो गया जी। ट्यूजडे 29 तरीक सितंबर दे महीने पहली गेम आ जिहड़ी मोन्ट्रियल दे अंदर इन्हां दी होएगी। पिछले फ्राइडे दस्सिया सी बीसी विच इक ग्रिजली बेयर जिहड़ा रिच सी सीनियर ते अटैक करता ते उह काफी जख्मी हो गया सी, हॉस्पिटल लैके गए सी लेकिन उत्थे विचारे दी मौत हो गई। एक फर्म है जी जिन्हां नूं एज ऐ ड्राइवर चाहिए ने, एक नहीं बहुत सारे ड्राइवर चाहिए ने और पैसे भी चंगे देणगे। टोरंटो तो मोन्ट्रियल, टोरंटो तो US दे रन ने। बाय वीकली पे मिलेगी, टॉप दी पे है, टाइम सर पे है 647-972-54-55 972-54-55 इन्हां दा नंबर है। अपने एडमिंटन विच एक्सीडेंट होया, दो जिहड़े करैक्शनज ऑफिस हुंदे ऑफिसर हुंदे ने जेलां वाले ते इक प्रिजनर सी कैदी सी, इह तिन्नां दी मौके ते मौत हो गई। यमन दे विच हूती हमले दे विच 10 लोकां दी मौत होई। जिहड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने आख्या कि जिहड़ा बर्थ टूरिज्म है उह ते बैन लगना चाहीदा, नहीं होना चाहीदा, इह गल ते मैं भी अग्री करदा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप कोई भी किसी गल ते अग्री नहीं करदा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਰਬ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸਰਵੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, 74% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਆ ਸੁਣੋ
1: ਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ, 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
2: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street or call 905-791-4900.
0: Apni community layi khushkhabri, Helix Wellness Physio and Rehab Center khul chukya hai, jithon tusi physiotherapy, massage therapy, chiropractor wargiyan sevaavan professionals valon dittiyan jandiyan han. Eh taqreeban sariyan insurance companyan naal khud deal karde ne. Counseling service vi available han. Helix Wellness Physio Rehab, 10930 Gorway Drive, Unit C, X1, Gorway and Countryside de corner te. Jyada jankari layi please call 905-913-5256, 905-913-5256,
3: 905-913-5256.
0: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਲੈਕਸ ਵੈਲਨਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਡ ਹੁੱਡ ਜੇ ਮੋਢੇ ਮਾਢੇ ਜੇ ਦੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਰਵੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਨਰ ਤੇ, ਨੰਬਰ 905-913-5256।

0: 32 55 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 9054502828 905-450-2828
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है 12x30 feet दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है पीछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.
5: It's wake up time. It's wake up time.
4: Now is the time to wake up.
6: Crank up the radio. You're listening to the Dave Tobler Show, brought to you in part by Culture.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मित्रां दे जंक्शन ते।
5: हो केड़े जंक्शन ते?
6: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
4: रात लगियां महफलां रे।
6: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुएट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
7: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Ja tusi visa services Nepal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection open.
8: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
8: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
10: आज खुश तो बात हो गई
11: था। ओ ता होना ही है, जो तो टिनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, तेन लगता बनदा ही है।
10: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
11: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
12: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
11: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
13: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
11: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
14: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 75+ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਔਨ ਟੇਸਟ ਦਾ ਕੰਬੋ। 50+ ਟੌਪਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪੀਜ਼ਾ। ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਮੈਂਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਪੀਜ਼ਾ।
15: ਜੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸੀ ਵਿੰਗਸ, 25 ਫਲੇਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ।
14: ਲੋਡਡ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਡੌਟ ਸੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।
15: ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਐਟ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਡੌਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੌਪ, ਟੌਪਿੰਗਸ ਨਾਨ ਸਟੌਪ।
16: ਵਿਮਲ ਅਵਲੀ ਜਿਲਾ ਵਲੀ ਚ ਪੜਦੀ ਪੀਓ ਚ ਜੱਟ ਪੜਦਾ। ਵਿਮਲ ਅਵਲੀ ਜਿਲਾ ਵਲੀ ਚ, ਵਿਮਲ ਅਵਲੀ ਜਿਲਾ ਵਲੀ ਚ ਪੜਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
17: ਲਿਸਨ ਲਾਈਵ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਵਿਦ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ।
12: जी दोस्तों, एक बार फिर वतनों दूर आप सब का निघा स्वागत है और प्रोग्राम का हिस्सा तुहाडे तक असीं किया 427 दे सहयोग दे नाल पेश कर रहे हैगे आ। उन्होंने इस वीक दे विच अपनी ग्रैंड ओपनिंग की है, एक बहुत वड्डा शोरूम उन्होंने ओपन किया है हाईवे 27 ते QEW उत्ते। और दसदिया कि एक स्पैशल जिहड़ा इस वीक उत्थे चल रहा है वह है चल रहा हाइब्रिड वीकेंड। हाइब्रिड वीकेंड यानी कि 14 तरीक तो लैके 14 अगस्त तो 16 अगस्त तक बहुत स्पैशल जिहड़ियां डील्स ने हाइब्रिड कारां दे उत्ते तुहानूं मिल गईआं, जिन्हां दे विचों तुसीं स्पोर्टेज, सरेंटो, नीरो, कई होर तरह दीआं वधीआ गड्डियां हैगीआं जिहड़ियां तुसीं लीज़ ते लै सकदे हो जां बाय कर सकदे हो। काफ़ी स्पैशल स्पैशल पैकेज होणगे। हाइब्रिड वीकेंड चल रहा इन्हां वल्लों किया 427 वल्लों। इन्हां दे सहयोग नाल अज दे प्रोग्राम नूं पेश कर रहे हैं ते नाल दी नाल अज दा प्रोग्राम है JD इंश्योरेंस दे सहयोग नाल। किसे तरह दी वी तुसीं सर्विस लैनी चाहुंदे हो, आटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस, लाइफ

0: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
5: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेयर Sound Live and Cellular Point present AmiWare live in Toronto. August 30th at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valio, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
6: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: हेलो एम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444

0: ஆசியா செகண்ட் மோர்கேஜ் ரீஃபைனான்ஸ் கிரவுன் சோனியோ தத்து சிவி அப்படி கட்டி மூடம் 1200 டெரி ரோட் ஈஸ்ட் யூனிட் 22 மிசிசாகா 416-804-2015 416-804-2015 சிம்பிளி இண்டியன் பிரிங்ஸ் யூ ஆல் சிம்பிளி டெலிஷியஸ் டீல்ஸ் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ எவ்ரி டே சூரிய தாஸ்து ஷாம் 7 தக் ஆன் டைனிங் அண்ட் டேக் அவுட்ஸ் மசாலா வோ சண்டே நோ பராட்டா பிளேட் மண்டே மன்பசந்த் குல்ச்சா பிளேட் டியூஸ்டே சனா பட்டூரா வென்ஸ்டே லாஜவாப் வெஜ் தாலி Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is simply Indian. This sariya hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, simply Indian.
1: Dosto, life insurance da license lena bahut sokha hai. Par sahi support to bina kam karna bilkul sokha nahi. Insurance field de vich hazaara loki aunde ne te hazaara hi jande ne. Par sirf professional advisors hi tike rehnde ne.
2: Jekar tusi ek license insurance एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट से ले सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहते हो ता फिर आज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू के नाल संपर्क करो
1: कॉल 416-457-3381 416-453-3381
2: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है
1: Top Financials de Insurance Advisors de lei pehle hi din ton highest commission package daily in office te online training te har ek major insurance company de naal direct contract da vi prabandh hai
2: ha insurance advisor chahe nave ho ya purane chahe active ho ya part time ya fir tusi sab to vadhiya brokerage di bhal vich ho ajj hi sampark karo Top Financial de Simraj Sidhu de naal 416-457-3381 416-457-3381
3: Canada vich rehnde hoye har parivar kol life insurance honi bahut zaruri है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
4: इसे ले मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही ली हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
7: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुने कॉल करो 905-564-6444
6: 905-564-6444
7: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो